0: लगावा।
1: बहुत विधि विधि पाठ का
2: बहुत विधि इधर बजी आया विधि
3: हां जी
2: लड़ीवार पोथी साहिब विच विधि के वेद विधि
1: विधि ठीक है वैसे
0: होए दास दासी तज उदासी बहुत विधि ना तावा नानक भयंपर।
3: पंक्ति का बैलेंस देखिए कविता के निजमां अनुसार जे आप विद बोलते हैं अद्धा मात्रा घट जाता होंगे जिन्होंने इहदी जानकारी है उन्होंने जरूर समझ आऊगी गल जो विधि बोलनी है अद्धा मात्रा वध जानी कि थोड़ा जा आवाज लंबी होनी है वह फिर कविता जानी कि पंक्ति मुताबक भी विधि शब्द ही टुकमा है जी।
2: जिहड़ियां रंगदार पोथियां ने तुहाडे कोल पहली लाइन वालियां दे कोल आप जी ने कृपा करके ये नोट कर लेना भी इत्थे पाठ विधि ठीक रहेगा विद दी थां ते। हां जी
0: नानक भयंपै करहो कृपा काम मंगल गावा।
3: रोकियो जी रोकियो। हां जी सिहारी लगी है ये बिहारी च बोलो शुद्ध पाठ बिहारी च बनेगा।
2: पोथी केड़ी है जी मैं उही बेनती की है जी पहला जिहड़ियां रंगदार पोथियां ने विश्रामा वालियां ਇਹਦੇ ਪਰ ਵਿਧ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਿਧੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਮਿਸਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪਾਠ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ
0: ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਿਆ ਕਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਅੰਦੁਲੇ ਟੋਹਣੀ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਬਹੁ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੁੰਦਰ ਮੋਹਨੀ ਮੋਹਨੀ ਮਹਾ ਵਿਚਿੱਤਰ ਚੰਚਲ।

बन है तीरै बरत पूजा बाट घाटै जोहनी नानक भयंपै दया धारहौ मैं नाम अंदुले टोहनी मोहे अनाथ प्रनाथ ज्यों जानहौ त्यों रखहौ।

0: गुण रवहै गुण संग्रहै ज्योति ज्योत मिलाए इस जुग मह विरले ब्राह्मण ब्रह्म बिंद है चित लाए।
1: जेड़ा पिछे पाठ आया संग्रह है जिन संग्रह पढ़ांगे तो फिर एक ही हा बोलना पर दो नहीं संग्रह है इस तरीके पाठ होना।
0: नानक जिन को नदर करे हर सच्चा से नाम रहे लिवलाए महला तीजा सतगुर की सेव

गुर का शब्द अमृत है, सब तृष्णा भुख गवाए, हर रस पी संतोख हुआ, सच वसिया मन आए, सच ध्याए अमरा पद पाया, अनहद शब्द बजाए, सचो दह दिस पसरिया, गुर कै सहज सुभाए, नानक जिन अंदर

तिथै हर साई अगै सब आपे वर्तदा हर सच्चा न्यायी कूड़े आरा के मोह फिटकी है सच भगत वड्याई सच साहिब सच्चा न्याओ है सिर निंदक छाई जन नानक सच आराध्या गुरमुख सुख पाई।

0: सुख मानवस्या सच्चे स्याओ लेवलाया ब्रह्मा विष्ण महादेव त्रै गुण भुले होमे मोह बधाया पंडित पढ़ पढ़ मुनि भुले दूजे पाए चित लाया जोगी जंगम सन्यासी भुले वेण गुर तत न पाया मनमुख दुखिये सदा ब्रह्म भुले तिनी बिरथा जन्म गवाया नानक नाम रते सही जन समदे जे आपे बख्श मिलाया महला तीजा।
1: ए पाठ जिवें कीता गया है शुद्ध है नानक नाम रते सही जन समदे ते कई पाठी समदे पाठ भी करदे पर हो समदे पाठ ही
0: महला तीजा। नानक सो साल आहिया जिस वस सब किछ होए तिस है सरेवहो प्राणी हो तिस है सरेवहो प्राणी हो तिस बिन अवर न कोए गुरमुख अंतर मन

जाहे न कबहु मरते पार्भम संगारी रे पुत्र कलतर लक्ष्मी माया यह तजहो जी जानी रे कहत कबीर सुनहो रे संतहो मिल है सारग पानी रे बेलावल विद्या ना परो बाद नहीं जानो हर गुण कथत सुन।

अबह न माता सो कबहु न माता कह कबीर राम रंग राता बेलावल द्रह ताज बन खंड जाइए चुन खाइए कंदा अजहो बेकार न छोड़ई पापी मन मंदा क्यों छूटाओ कैसे तराओ भव जल निध भारी राख राख मेरे बीठुला जन सरन तुम्हारी रहाओ बिखे बिखे की बासना तजी नह जाई अनक

आसन पवन दूर कर बबरे छोट कपट नित हर भज बबरे रहाओ जेह तू जच है सो त्रे पवन भोगी कह कबीर के सौ जग जोगी बिलावल इन माया जगदीश गुसाई तुमरे चरण बिसारे किंचित प्रीत न उपजे जन कहो जन कहा करह बेचारे रहाओ त्रिग तन त्रिग तन त्रिग एक माया त्रिग त्रिग मत बुद्ध फनी इस माया को दृढ़ कर रख हो बंदे आप बचनी क्या खेती क्या लेवा देई परपंच झूठ गुमाना कह कबीर ते अंत बिगूते आया काल निदाना बिलावल शरीर सरोवर भीतरे आछे कमल अनूप परम ज्योत पुरखोत्मो जा कै रेख न रूप रे मन हर भज भ्रम तजहो जग जीवन राम रहाओ आवत कछु न दिसई।

देव जी की। एक ओंकार सतगुर प्रसाद सफल जन्म मोकाओ गुर कीना, दुख विसार सुख अंतर लीना, ज्ञान अंजन मोकाओ गुर दीना, राम नाम बिन जीवन मन हीना, रहाओ नाम दे सिमरन कर जाना, जग जीवन सिओ जियो समाना, बिलावल बाणी रविदास भगत की। एक ओंकार सतगुर प्रसाद दारिद देख सब को हसै, ऐसी दशा हमारी अष्ट दशा सिद्ध कर तलै, सब कृपा तुम्हारी तू जानत मैं किछ नहीं, भाव खंडन राम सगल जी शरणागति।

0: सुना होए बारन अबारन रंग नहीं ईसर बेमल बास जानिया जग सोए रहाओ ब्राह्मण बैस सूद अर ख्यात्री ब्राह्मण बैस सूद अर ख्यात्री डोम चंडार मलेच मन सोए होए पुनीत भगवंत भजन ते आप तार तारे कुल दोए धन सो गाओ धन सो ठाओ धन पुनीत कुटंब सब लोए जिन पिया सार रस तजे आन रस होए रस मगन डारे बिख खोए पंडित सूर छतरपत राजा भगत बराबर और न कोए जैसे पुरैन पात रह जल समीप पान रविदास जन्मे जग ओए
1: पान पाठ हमेशा पोला होना इनू अदक नहीं लगना चाहिए टिपी तो लगनी होगी है पान पान होंदा उचारना बोलना जी।

0: जो थाके थिर नहीं कैसे बिरमावो बूट मुए नौका मिला कहो काहे चढ़ावो मैं नाही कछ हो नहीं कछ आ किछ आहे न मोरा मैं नाही कछ हो नहीं किछ आहे न मोरा अवसर लज्जा राख ले हो सदना जन तोरा एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभाव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सह भंगुर प्रसाद राग गौड़ चौपदे महला चौथा घर पहला जे मन चित आस रख हर ऊपर ता मन चिंदे अनेक अनेक फल पाई।
1: हुण राग गौड़ इथो प्रारंभ हो रहा है। कई थामां ते शब्द कनौड़े दे नाल गौड़ लिखिया आवेगा। अंग्रेजी वाला गौड़ नहीं, यह राग का नाम गौड़ है। कई थामां ते गौड़ लिखिया आवेगा, कई थामां ते बिंदी दे सहित गौड़ लिखिया आवेगा, पर राग इको ही है। गौड़ आम करके आपां कहने गुरमत संगीत दे विच, पर तीन तरह के नाल सिरलेख लिखे आउणगे, गौड़ गौड़ ते गौड़। अगे तुहानूं हुण दर्शन हो जाने ने। सो यह जिहड़ा राग है गौड़, यह राग 12 to 3 vaje तक का जिहड़ा दुपहर का वेला हुंदा है, दुपहर 12 to 3 vaje तक का इस राग नूं गाउण दा समा है।
0: जे मन चित आस रखै हर ऊपर ता मन चिंदे अनेक अनेक फल पाई हर जाणै सब किछ जो जिए वरतै प्रभ घालिया किसै का एक तिल न गवाई हर तिसकी आस कीजै मन मेरे सो जो सब मह स्वामी रहया समाई मेरे मन आसा कर जगदीश गुसाई जो बिन हर आस अवर काहू की कीजै सा निहफल आस सब बिरथी जाई रहाओ जो दीसै माया मोह कुटंब सब मत तिसकी आस लग जन्म गवाई इन कै किछ हाथ नहीं कहा करहै एह बपुड़े इनका वाहिया कछ ना वसाई मेरे मन आस कर हर प्रीतम अपने की जो तुझ सारै जो तुझ तारै तेरा कुटंब सब छड़ाई जे किछ आस अवर करहै पर मित्री मत तू जान है तेरा कितै काम आई एह आस पर मित्री भाओ दूजा है खिन मह झूठ बिनस सब जाई मेरे मन आसा कर हर प्रीतम साचे की जो तेरा घालिया सब थाए पाई आसा मनसा सब तेरी मेरे स्वामी जैसी तू आस कराव है तैसी को आस कराई किछ किसी कै हाथ नाही किछ किसी कै हाथ नाही मेरे स्वामी ऐसी मेरे सतगुर बूझ बुझाई जन नानक की आस तू जान है हर दर्शन देख हर दर्शन त्रिपताई गौड़ महला चौथा ऐसा हर सेविय नित त्याय जो खिन मह किल विख सब करे बिनासा जे हर त्याग अवर की आस कीजै ता हर निहफल सब काल गवासा मेरे मन हर सेवे हो सुखदाता स्वामी जिस सेवे सब भुख लहासा मेरे मन हर ऊपर की जय।

तुझ राखै सब ठाई सो ऐसा प्रभ सेव सदा तू अपना रहाओ जा मह सब निदान सो हर जप मन मेरे गुरसिख खोज लहो हर गुरमुख खोज लहो हर रतना जिन हर ध्याया तिन हर पाया मेरा स्वामी तिन के चरण मलहो हर दसना सबद पछाण राम रस पावहो ओह उतम संत भयो बड बडना तिस जन की वडियाई हर आप वधाई ओह घटै न किसै की घटाई एक तिल तिल तिल ना जिस ते सुख पाव है मन मेरे सो सदा ध्याए नित कर जुरना जन नानक कौ हर दान इक दीजै नित बस है हृदय हर नित बस है हृदय हरि मोहे चरना गौड महला चौथा जितने साह पात साह उमराव सिकदार चौधरी सब मिथ्या झूठ भाओ दूजा जान हर अविनाशी सदा

तिस जेवड अवर नाही किसै दा तान रहाओ। जितने धनवंत कुलवंत मिलखवंत दीसह मन मेरे, सब बिन सजाहे ज्यो रंग कसुंब कचाण। हर सत निरंजन सदा सेव मन मेरे, जित हर दरगह पाव है तू मान। ब्राह्मण खत्री सूद वैस चार वर्ण चार आश्रम है, जो हर त्यावै सो प्रधान। ज्यो चंदन निकट वसै हिरड बपुड़ा, ज्यो चंदन निकट वसै हिरड बपुड़ा, त्यो सत संगत मिल।

तिस के चरण पखालै, जो हर जन नीच जात सेवकान। गोड महला चौथा, हर अंतर जामी सब तै वरतै, जेहा हर कराए तेहा को करैयै। सो ऐसा हर सेव सदा मन मेरे, जो तुदनो सब दू रख लई।

0: मन कायत कढ़ैया ता मेरे मन कायत कढ़ैया
1: कक्के ना कढ़ैया
0: ता मेरे मन कायत कढ़ैया रहाओ हर पर पंच किया सब करता विच आपे अपनी जोत धरैया हर एको बोलै हर एक बुलाए गुर पूरै हर एक दिखैया हर अंतर नाले बाहर नाले कहो तिस पास हो मन क्या चोरैया नेह कपट सेवा कीजै हर केरी नेह कपट सेवा कीजै हर केरी ता मेरे मन सर्ब सुख पैया जिस दै वास सब किछ।

0: एक ओंकार सतगुर प्रसाद, जी प्राण किए जिन साज, माटी मह जोत रखी निवाज, बर्तन कौ सब किछ भोजन पोगाए, सो प्रब तज मूड़े कत जाए।
1: एक मिनट दियो जी, जिहड़ियां विश्रामां वालियां पोथियां ने रंगदार पोथियां तुहाडे कोल, इत्थे आप जी जरूर ध्यान नाल वेखो। गोंड महला पंजवा, फाक्यो मीन कपिक की न्याई, तू उर्ज रहियो कुसुम भाए ले पाठ आए। पब्बे नूं कन्ना इत्थे लगना है पर रंगदार पोथियां विच लग्या नहीं होया। आप जी ने कृपा करके जरूर यह नोट कर लेना भी पब्बे नूं इत्थे कन्ना नाल ला के पाठ होना, जिस तरह भाई साहब जी ने किया सी, मैं तां ही दुआरे मेक श्योर किया, क्योंकि इत्थे जिहड़ियां रंगदार पोथियां ने उन्हां विच पब्बे नूं कन्ना है नहीं। सो ये आप जी ने जरूर इत्थे नोट कर लेना, कुसुंबे ले पाठ नहीं करना, कुसुम बहेले पाठ करना है कन्ना ला।
0: जी प्राण किए जिन साज, माटी मह जोत रखी निवाज, बर्तन कौ सब किछ भोजन पोगाए, सो प्रभ तज मूड़े कत जाए। पार ब्रह्म की लागो सेव, गुर ते सुजै निरंजन देव, रहाओ जिन किए।

ऐसो प्रभ मन माहे ध्याए घट आव घट जत कत है सहाय रहाओ रंक राओ जा कै एक समान कीट हस्त सगल पूरान बियो पूछ ना मसलत धरै जो किश करै सो आप है करै जा का अंत

0: तब भेटे गुरसाध दयाल दिन रैन नानक नाम त्याए सुख सहज आनंद हर नाए।
1: इथे हुण आपां ब्रेक कर लैणे आ 5 मिंट आप जी जल पाणी वरत के वापस आ जाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

0: पतन होए जिस कौ राखै सिरजनहार चख मारो सगल संसार प्रभ अपने का भया विश्वास जियो पिंड सब तिस की रास नानक का उपजी प्रतीत मन मुख हार गुरमुख साध जीत।
1: हां जी पाठ आया सी हुण जो निंदा तिस का पतन होए ए पतन पाठ नहीं करना अधिक नहीं लगना चाहिदा पोला ही पाठ रहना जिस तरह कीता गया ध्यान रखना देते जी।
0: गोंड महला पंजवा नाम निरंजन नीर नारायण।

नारायण कहते नरक न जाहे, नारायण सेव सगल फल पाहे, नारायण मन माहे आधार, नारायण बोहेत संसार, नारायण कहत जम भाग पलायन, नारायण दंत भाने डायन, नारायण साध सद बख सिंध, नारायण कीने सुख आनंद, नारायण प्रगट कीनो प्रताप, नारायण संत को माई बाप, नारायण साध संग नारायण, बारंबार नारायण गायन, बस्त अगोचर।

राम कवच दास का सन्नाहो, राम कवच दास का सन्नाहो, दूत दुष्ट तिस पोहत नाहे, जो जो गर्भ करे सो जाए, गरीब दास की प्रभ शरण आए, जो जो शरण पया हर राय, सो दास रखिया अपने कंठ लाए, जे को बहुत करे अहंकार, ओह खेन मह रुड़ता।

0: प्राण आधार गोंड महला पंजवा अचरज कथा महा अनूप प्रातमा पार भ्रम का रूप रहाओ ना एहो बूढ़ा ना एहो बाला ना एस दुख नहीं जम जाला ना एहो बिनसै ना एहो जाय आद जुगादि रह समाय ना इस उसन नहीं इस मीत ना इस दुश्मन ना इस मीत ना इस हरख नहीं इस सोग सब किश इसका एहो करने जोग
1: बीबी मुंह विच करो पाठ इत्थे तक आउंदी आवाज उच्ची आवाज विच पाठ नूं करना जिन्ने विद्यार्थी ने सारे अपने मुख विच ही पाठ करो फिर नाल दे होर विद्यार्थियों नूं समझ नहीं लगदी आपां पाठ सुनना जरूर है नाल पर करना मुख विच ही है करना उन्ना हुण संथिया वास्ते तुहाडे वास्ते जरूरी नहीं जिन्ना सुनना जरूरी है जे सुनोगे फिर तुहानूं पता लगेगा हुण आवाज स्टेज तक
2: बेनतियां बहुत हो चुकियां ने मैं उम्मीद करदा भी 16 अगस्त तक तुसीं अमल कर लोगे सारियां ते बार बार ना कहना पवे जी
1: हाँ जी
0: ना इस बाप नहीं इस माया एहो अपरंपर होता आया पाप पुन का इस लेप ना लागे घट घट अंतर सद ही जागे तीन गुणा एक सकत उपाया महा माया ता की है छाया अशल अशेद अभेद दयाल।

संतन कै बलिहारै जाओ, संतन कै संग राम गुण गाओ, संत प्रसाद केल विख सब गए, संत सरन बड़भागी पए, नाम जप राम जपत कछ बिघन ना व्यापै, गुर प्रसाद अपना प्रभ जापै रहाओ, पार ब्रह्म जब हुए दयाल, साधु जन की करै रवाल, काम क्रोध इस तन ते जा।

कठोर अजहू न पतीना कह कबीर हमरा गोबिंद। चौथे पद मह जानकी जिंद गौंड ना एहो मा।

0: सगलो द्रव खोई, आवत जात ना कसर होई, आवत जात ना कसर होई।
1: सार पाठ मुख है, कट्ठा लिखा हुआ है। दूजा पाठ ना कसर होई भी कर दे, आवत जात ना कसर होई मुख पाठ ही।
0: आवत जात नाकसर होई रहाओ,
1: ये नाकसर दा अर्थ हुंदा वी नक दे विच दम आ गया, नाकसर होई।
2: जिहड़े रंगदार पोथियां ने उन्हां विच ध्यान दिओ, उत्थे नाकसर लिखिया होया है, इहनूं इकट्ठा कर लेना। आवत जात नाकसर होई, जिहड़ा विचाले गैप है इह नहीं रखना, नाकसर ही पाठ कर।
1: ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਬੋਲਣ ਚ ਆਊਗਾ, ਪਰ ਹੈ ਸੰਬੰਧ ਕੀ ਆ।

जाहे, इक दोए मंदर इक दोए बाट, हम कौ साथर उन कौ खाट, मूड पलोस कमर बद पोथी।

बह पखियारी संत की ठिटकी फिरै बिचारी संत की ठिटकी फिरै बिचारी संत भाग ओह पाछै परै गुर प्रसादी मारहु डरै साकत की ओह।

पढ़ता सगल धर्म अछिता, सगल धर्म अछिता गुर ज्ञान इंद्री दृढ़ता, खाट कर्म सहत रहता सेवा सकत संवादं, मान छोड़ छोड़ सगल भेदं, सिमर सिमर गोबिंदं।

निमख मैं। नर ते सुर होए जात निमख मैं, सतगुर बुद्ध सिखलाई। नर ते उपज सुरग कौ जीत्यो, सो अवखद मैं पाई। जहा जहा तू नारद टेके, नैक टिकाव हो मोहे। तेरे नाम अविलंब।

दास अब तृष्णा चूकी जाप मुकंद सेवा ताहू की गौंड जे ओह अठ सठ तीरथ नावै जे ओह अठ सठ तीरथ नावै जे ओह

0: आपे सर्ब रहया भरपूर सतगुर मिलै अंधेरा जाए जह देखा तह रहया समाए अंतर सहसा बाहर माया नैनी लागस बाणी प्रणवत नानक दासन दासा प्रतापे हैगा प्राणी प्राम कली महला पहला
1: जी प्रतापे का पढ़ांगे तो ना लग जानी जी इनू प्रताप हैगा पढ़ लेना मैं एक बार पढ़ देना सारी पंक्ति प्रणवत नानक दासन दासा प्रताप हैगा प्राणी फिर सारे अखर बोले जाएंगे। हाँ जी
0: राम कली महला पहला जित दर वस है कवन दर कहिए दरा भीतर दर कवन लह जिस दर कारण फिरा उदासी सो दर कोई आन कह किन बिद सागर जिस दर कारण फिरा उदासी सो दर कोई आए कह किन बिद सागर तरिय जीवत्या नह मरिय रहाओ दुख दरवाजा रोह रखवाला आसा अंदेसा दुए पट जड़े माया जल खाई पानी कर बाध्या सत कै आसन पुरख रह किंते नामा अंत न जानिया तुम सर नाही अवर हरे ऊचा नहीं कहना मन मह रहना आपे जाने आप करे जब आसा अंदेसा तब ही क्यों कर एक कह आसा भीतर रहे निरासा तौ नानक एक मिले इन बिद सागर तरिये जीवत्या इओ मरिये रहाओ दूजा राम कली महला पहला सुरत शब्द साखी मेरी सिंगी बाजै लोक सुने पत झोली मंगण कैताई भीख्या नाम पड़े बाबा गोरख जागै गोरख सो जिन
2: भीख्या नाम पड़े
0: बाबा गोरख जागै गोरख सो जिन गोए उठाली करते बार ना लागै रहाओ पानी प्राण पवन बंद राखे चंद सूज मुख दिए मरण जीवन को धरती दीनी एते गुण विसरे सिद्ध साधे कर जोगी जंगम पीर पुरुष बहु तेरे जे तिन मिला ता कीर्त आखा ता मन सेव करे कागद लून रह कृत संगे पानी कमल रह ऐसे भगत मिला है जन नानक तेन जम क्या करे राम कली महला पहला सुन माशिंद्रा नानक बोले वसगत पंच करे नह डोले ऐसी जुगत जोग कौ पाले आप तरे सगले कुल तारे सो आओ धूत ऐसी मत पावे अहनस सुन समाध समावे रहाओ भिख्या पाए भगत पै चले होवे सो त्रिपत संतोख अमुले ध्यान रूप होए आसन पावे सच नाम ताड़ी चित लावे नानक बोले अमृत बाणी सुन माशिंद्रा औदु नीसाणी आसा माहे निरास बलाए नेह चौ नानक करते पाए प्रणवत नानक अगम सुनाए गुर चेले की संद मिलाए देख्या दारू भोजन खाए छे दर्शन की सोजी पाए राम कली महला पहला हम डोलत बेड़ी पाप भरी है पवन लगे मत जाई सनमुख सिद्ध भेटन कहो आए नेह चो देह बड़े आई गुर तार तारन हारिया देह भगत पूर्ण अविनाशी हौ तुझ कहो बलिहारिया रहाओ सिद्ध साधक जोगी अर जंगम एक सिद्ध जिनी त्याया परसत पैर सिजत ते स्वामी अखर जिन कौ आया जप तप संयम कर्म न जाना नाम जपी प्रभ तेरा गुर परमेसर नानक भेट्यो साचै शब्द निबेरा राम कली महला पहला सुरती सुरत रलाइय एत सुरत सुरती सुरत रलाइय

0: কারণে আলো টান টান সাল শ্রী গুরু গোবিন্দ শ্রী মানে পাব
1: करेगा चूलते निशान रहे चूलते निशान रहे लागते दीवान रहे लागते दीवान रहे बोले सो निहाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

जप आदि सच जुगादि सच है भी सच नानक होसी भी सच सोचै सोच न होवई जे सोची लख वार चुपै चुप न होवई जे लाए रहा लेवतार भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया भार सहस सियाणप लख होहे ता इक न चलै नाल केव सचियारा होइए केव कूड़ै तुटै पाल हुकम रजाई चलना नानक लिखिया नाल हुक्मी होवन आकार हुक्म ना कहया जाई हुक्मी होवन जी हुक्म मिलै वडियाई हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाई है इक ना हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा पवाई है हुक्मै अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोय नानक हुक्मै जे बुझै ता हउमै कहै ना कोय गावै को तान होवै किसै तान गावै को दात जानै निसान गावै को गुण वडियाइया चार गावै को विद्या विखम विचार गावै को साज करे तान खेह गावै को जी लै फिर देह

कथ कथि कोटि कोट कोट देदा दे लै दे थक पाहे जुगा जुगंतर खाही खाहे हुक्मे हुक्म चलाए राहु नानक विगसै वे परवाहु साचा साहिब साच नाए भाख्या भाव अपार आखह मंगह देह देह दात करे दातार फेर के अगै रखिया जित दिसै दरबार मुहाओ के बोलन बोलिया जित सुन धरे प्यार अमृत वेला सच नाओ वडियाई विचार करमी आवै कपड़ा नदरी मोख द्वार नानक एवै जानिया सब आपे सचियार थापिया ना जाए कीता ना होए आपे आप निरंजन सोए जिन सेव्या तिन पाया मान नानक गाविया गुणी निदान गाविया सुनिया मन रखिया भाओ दुख पर हर सुख घर लै जाए गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रहया समाई गुर ईसर गुर गोरख बर्मा गुर पार्वती माई जे हाओ जाना आखा नाही कहना कथन ना जाई गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर ना जाई तीरथ नावा जे तिस भावा विन भाणे के नाए करी जेती सिरठ उपाई वेखा विन करमा के मिलै लई मत विच रतन जवाहर मानिक जे एक गुर की सिख सुनी गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर ना जाई जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए नवा खंडा विच जानिया नाल चलै सब कोय चंगा नाउर खाए कै जस कीरत जग ले जे तिस नदर ना आवई ता वात ना पुछै के कीटा अंदर कीटकार दोषी दोष धरे नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे तेहा कोय ना सुजई जे तिस गुण कोय करे सुनिया सिद्ध पीर सुरनाथ सुनिया धरत धवल आकाश सुनिया दीप लोह पाताल सुनिया पोहे ना सकै काल नानक भगता सदा विगास सुनिया दुख पाप का नास सुनिया ईसर बर्मा इंद सुनिया मुख साला हनुमंद सुनिया जोग जुगत तन भेद सुनिया सासत सिमृत वेद नानक भगता सदा विगास सुनिया दुख पाप का नास सुनिया सत संतोख ज्ञान सुनिया अठ सठ का इसनान सुनिया पढ़ पढ़ पावह मान सुनिया लागै सहज ध्यान नानक भगता सदा विगास सुनिया दुख पाप का नास सुनिया सरा गुणा के गाह सुनिया सेख पीर पात साह सुनिया अंधे पावह राह सुनिया हाथ होवै असगाह नानक भगता सदा विगास सुनिया दुख पाप का नास

ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए। मन्नै सुरत होवै मन बुद्ध, मन्नै सगल भवन की सुध। मन्नै मोहे चोटा ना खाए, मन्नै जाम कै साथ ना जाए। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए। मन्नै मार्ग ठाक ना पाए, मन्नै पत स्यो प्रगट जाए। मन्नै मग ना चलै पंथ, मन्नै धर्म सेती संबंध। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए। मन्नै पावह मूख द्वार, मन्नै परवार साधार। मन्नै तरै तारे गुर सिख, मन्नै नानक पवह न भिख। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए। पंच परवान पंच प्रधान, पंचे पावह दरगह मान। पंचे सोह है दार राजान, पंचा का गुर एक त्यान। जे को कह करै विचार, करते कह करने नाही सुमार। तौल धर्म दया का पूत, संतोख थाप रखिया जिन सूत। जे को बुझै हुवै सचियार, तवलै उपर किता भार। धरती होर परै होर तिस्ते भार, तलै कवन जोर। जी जात रंगा के नाव, सबना लिखिया बुड़ी कलाम। एहो लेखा लिख जाने कोए, लेखा लिखिया केता होए। केता तान सुवाले हो रूप, केती दात जाने कौन कूत। कीता पसाओ एको कवाओ, तेस्ते होए लख दरियाओ। कुदरत कवन कहा विचार, वारिया ना जावा एक वार। जो तुद भावै साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख जाप असंख भाओ, असंख पूजा असंख तापताओ। असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रह है उदास। असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार। असंख सूर मोह पख सार, असंख मोन लिव लाए तार। कुदरत कवन कहा विचार, वारिया ना जावा एक वार। जो तुद भावै साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख मूरख अंध कोर, असंख चोर हराम खोर। असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गाल वड हत्या कमाहे। असंख पापी पाप कर जाहे, असंख कूड़ियार कूड़े फिराहे। असंख मलेच्छ माल पख खाहे, असंख निंदक सिर कर है भार। नानक नीच कह विचार, वारिया ना जावा एक वार। जो तुद भावै साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो। असंख कह है सिर भार होए, अखरी नाम अखरी सालाह। अखरी ज्ञान गीत गुण गाह, अखरी लिखन बोलन बाण। अखरा सिर संजोग वखान, जिन एह लिखे तिस सिर नाहे। जिव फुरमाए तिव तिव पाहे, जेता कीता तेता नाओ। विन नावै नाही को थाओ, कुदरत कवन कहा विचार। वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावै साई भली कार। तू सदा सलामत निरंकार, भरिया हाथ पैर तन देह। पानी धोतै उत्तर सोखेह, मूत पलीते कपड़ होए दे। साबून लइयै ओह धोए, भरिया मत पापा कै संग। ओह धोपै नावै कै रंग, पुन्नी पापी आखन नाहे। कर कर करना लिख लै जाहो, आपे बीज आपे ही खाहो। नानक हुक्मी आवहु जाहो, तीरथ तप दया दत दान। जे को पावै तिल का मान, सुनिया मन्या मन कीता भाओ। अंतरगत तीरथ मल नाओ, सब गुण तेरे मैं नाही कोए।
ਵਿਨ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਸਵਸਥ ਆਥ ਬਾਣੀ ਬਰਮਾਓ, ਸਤ ਸੁਹਾਨ ਸਦਾ ਮਨ ਚਾਓ। ਕਵਨ ਸੋ ਵੇਲਾ ਵਖਤ ਕਵਨ, ਕਵਨ ਥਿਤ ਕਵਨ ਵਾਰ, ਕਵਨ ਸੇ ਰੁੱਤੀ ਮਾਹੋ ਕਵਨ, ਜਿਤ ਹੋਆ ਆਕਾਰ, ਵੇਲ ਨਾ ਪਾਈਆ ਪੰਡਤੀ। ਜੇ ਹੋਵੈ ਲੇਖ ਪੁਰਾਣ, ਵਖਤ ਨਾ ਪਾਇਓ ਕਾਦੀਆ, ਜੇ ਲਿਖਣ ਲੇਖ ਕੁਰਾਨ, ਥਿਤ ਵਾਰ ਨਾ ਜੋਗੀ ਜਾਣੈ, ਰੁੱਤ ਮਾਹੋ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾ ਕਰਤਾ, ਸਿਰ ਠੀਕਾਉ ਸਾਜੇ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸੋਈ। ਕਿਵ ਕਰ ਆਖਾ ਕਿਵ ਸਾ ਲਾਹੀ, ਕਿਉ ਵਰਨੀ ਕਿਵ ਜਾਣਾ, ਨਾਨਕ ਆਖਣ ਸਭ ਕੋ ਆਖੈ, ਇਕ ਦੂ ਇਕ ਸਿਆਣਾ। ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀ ਨਾਈ, ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਾ ਹੋਵੈ ਨਾਨਕ, ਜੇ ਕੋ ਆਪਾਉ ਜਾਣੈ ਅੱਗੈ ਗਇਆ ਨਾ ਸੋਹੈ। ਪਾਤਾਲਾ ਪਾਤਾਲ ਲਖ, ਆਗਾਸਾ ਆਗਾਸ, ਓੜਕ ਓੜਕ ਭਾਲ ਥੱਕੇ, ਵੇਦ ਕਹਿਣ ਇਕ ਵਾਤ, ਸਹਿਸ ਅਠਾਰ ਹੈ ਕਹਿਣ ਕਤੇਬਾ, ਅਸਲੂ ਇਕ ਧਾਤ। ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲਿਖੀਐ, ਲੇਖੈ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ, ਨਾਨਕ ਵੱਡਾ ਆਖੀਐ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪ। ਸਾ ਲਾਹੀ ਸਾ ਲਾਹੇ, ਏਤੀ ਸੁਰਤ ਨਾ ਪਾਈਆ, ਨਦੀਆ ਅਤੈ ਵਾਹ, ਪਵਹਿ ਸਮੁੰਦ ਨਾ ਜਾਣੀਐ ਹੈ ਸਮੁੰਦ ਸਾਹ ਸੁਲਤਾਨ, ਗਿਰਹਾ ਸੇਤੀ ਮਾਲ ਧਨ, ਕੀੜੀ ਤੁਲ ਨਾ ਹੋਵਨੀ, ਜੇ ਤਿਸ ਮਨਹੋ ਨਾ ਵੀਸਰ ਹੈ, ਅੰਤ ਨਾ ਸਿਫਤੀ ਕਹਿਣ ਨਾ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨਾ ਕਰਨੈ ਦੇਣ ਨਾ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨਾ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨਾ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਕਿਆ ਮਨ ਮੰਤ, ਅੰਤ

के सर्वत्र पाहो के सर्वत्र देसा के सर्वत्र पेसा के सर्वत्र काला के सर्वत्र पाला के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काजा के सर्वत्र राजा के सर्वत्र सोखा के सर्वत्र पोखा के सर्वत्र तराण के सर्वत्र प्राण के सर्वत्र देसा के सर्वत्र पेसा के सर्वत्र मान्याय सदैव प्रधान्याय के सर्वत्र जाप्याय के सर्वत्र थाप्याय के सर्वत्र भान्याय के सर्वत्र मान्याय के सर्वत्र इंद्राय के सर्वत्र चंद्राय के सर्वं कलिमै के परमं फहिमै के आकल अलामै के साहिब कलामै के हुस्नुल वजूहै तमामुल रुजूहै हमेशुल सलामै सलीखत मुदामै गनीमुल सिकस्तै गरीबुल परस्तै बिलंदुल मकानै जमीनुल जमानै तमीजुल तमामै रुजूअल निदानै हरीफुल अजीमै रजायक यकीनै अनेकुल तरंग हैं अपीद हैं अपंग हैं अजीजुल निवाज हैं गनीमुल खिराज हैं निरुक्त स्वरूप हैं त्रिमुक्त विभूत हैं प्रभुगत प्रभा हैं सुजुगत सुधा हैं सदैवं स्वरूप हैं अपेदी अनूप हैं समस्त पराज हैं सदा सर्व साज हैं समस्तुल सलाम हैं सदैवल अकाम हैं निर्बाध स्वरूप हैं अगाध हैं अनूप हैं ओअंग आद रूपे अनाद स्वरूप अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे त्रिवर्गं त्रिबाधे अगंजे अगाधे सुबंग सर्व भागे सुसर्वा अनुरागै त्रिपुगत स्वरूप हैं अछिज हैं अछूत हैं किनरकं परनास हैं पृथ्वीउल प्रवास हैं निरुकत प्रभा हैं सदैवं सदा हैं विपुगत स्वरूप हैं प्रजुगत अनूप हैं निरुकत सदा हैं विपुगत प्रभा हैं अनुकत स्वरूप हैं प्रजुगत अनूप हैं चाचरी छंद अपंग हैं अनंग हैं अपेख हैं अलेख हैं अपर्म हैं अकर्म हैं अनाद हैं जुगाद हैं अजय हैं अभय हैं अभूत हैं अदूत हैं अनास हैं उदास हैं अतंद हैं अबंध हैं अभगत हैं विरक्त हैं अनास हैं प्रकाश हैं निचिंत हैं सुनिंत हैं अलेख हैं अदेख हैं अलेख हैं अपेख हैं अटाह हैं अगाह हैं असंभ हैं अगंभ हैं अनिल हैं अनाद हैं अनित हैं सुनित हैं अजात हैं अजाद हैं चरपट छंद त्व प्रसाद सर्वं हंता सर्वं गंता सर्वं ख्याता सर्वं ज्ञाता सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणं सर्वं तराणं सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं जुगता सर्वं मुक्ता रसावल छंद त्वय प्रसाद नमो नरक नासे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते परमाथं परमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगे अनामे त्रिपंगी त्रिकामे निरपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पोतराय न पुत्राय न सत्राय न मित्राय न ताताय न माताय न जाताय न पाताय निरसाकं सरीक हैं अमितो अमीक हैं सदैवं प्रभा हैं अजय हैं अजा हैं भगवती छंद त्वय प्रसाद के जाहर जहूर हैं के हाजर हजूर हैं हमेशुल सलाम हैं समस्तुल कलाम हैं के साहिब दिमाग हैं के हुसनल चराग हैं के कामल करीम हैं के राजक रहीम हैं के रोजी देहांद हैं के राजक रहिंद हैं करीमुल कमाल हैं के हुस्नुल जमाल हैं गनी

मूल खिराज है, गरीबुल निवाज है, हरीफुल सिकन है, हिरासुल फिकन है, कलंकं परनास है, समस्तुल निवास है, अगंजुल गनीम है, रजायक रहीम है, समस्तुल जुबा है, के साहिब किरा है, के नरकं परनास है, बेहस्तुल निवास है, के सरबुल गवन है, हमेशुल रवन है, तमामुल तमीज है, समस्तुल अजीज है, परं परम ईस है, समस्तुल अदीस है, अदेशुल अलेख है, हमेशुल अपेख है, जमीनुल जमा है, अमीकुल इमा है, करीमुल कमाल है, के जुर्रत जमाल है, के अचलंग प्रकाश है, के अमितो सुबास है, के अजब स्वरूप है, के अमितो बेभूत है, के अमितो पसा है, के आत्म प्रभा है, के अचलंग अनंग है, के अमितो अपंग है, मद भार छंद त्वय प्रसाद, मुन मन प्रणाम, गुण गण मुदाम, अर बर अगंज, हर नर प्रपंज, अन गण प्रणाम, मुन मन सलाम, हर नर अखंड, बर नर अमंड, अनुभव अनास, मुन मन प्रकाश, गुण गण प्रणाम, जल थल मुदाम, अनचिज अंग, आसन अपंग, उपमा अपार, गतमित उदार, जल थल अमंड, दिस विस अपंड, जल थल महंत, दिस विस बेअंत, अनुभव अनास, त्रित धर तुरास, आ जान बाहु एकैस दाहु, ओंकार आदि कथनी अनाद, खाल खंड ख्याल, गुर बर अकाल, घर घर प्रणाम, चित चरण नाम, अनचिज गात, आजिज ना बात, अन झंझ गात, अन रंज बात, अन तुट भंडार, अन ठट अपार, आडीठ धर्म, अत ढीठ कर्म, अन बरन अनंत, दाता महंत, हर बोल मना छंद, त्वै प्रसाद, करुणालय है, अरकालय है, खल खंडन है, महमंडन है, जगतेश्वर है, परमेश्वर है, कल कारण है, सर्व उबारण है, त्रित के तरण है, जग के करण है, मन मान्या है, जग जान्या है, सर्वं पर है, सर्वं कर है, सर्व पास्या है, सर्व नास्या है, करुणाकर है, विश्वं पर है, सर्वेश्वर हैं, जगतेश्वर हैं, ब्रह्मंडस हैं, खल खंडस हैं, पार ते पार हैं, करुणा कर हैं, अजपा जाप हैं, अथपा थाप हैं, अकृता कृत हैं, अमृता मृत हैं, अमृता मृत हैं, करुणा कृत हैं, अकृता कृत हैं, धरणी त्रित हैं, अमितेश्वर हैं, परमेश्वर हैं, अकृता कृत हैं, अमृता मृत हैं, अजबा कृत हैं, अमृता मृत हैं, नर नायक हैं, खल कायक हैं, बेस्वंग पर हैं, करुणालय हैं, नृप नायक हैं, सर्व पायक हैं, भाव भंजन है, अर गंजन है, रिप तापन है, जप जापन है, अकलंग कृत है, सर्वा कृत है, कर्ता कार है, हरता हार है, परमात्म है, सर्व आत्म है, आत्म बस है, जस के जस है, पुजंग पर्यात छंद, नमो सूरज सूरजे, नमो चंद्र चंद्रे, नमो राज राजे, नमो इंद्र इंद्रे, नमो अंधकारे, नमो तेज तेजे, नमो बृंद बृंदे, नमो बीज बीजे, नमो राज संग ताम संग सांत रूपे, नमो परम तत्तंग अतत्तंग स्वरूपे, नमो जोग जोग नमो जोग जोगे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो मंत्र मंत्रे, नमो ध्यान ध्याने।
नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलह करता नमो सांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादं विभूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आस आसे नमो बांक बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे एक अक्षरी छंद अजय अलय अपय अभय अपू अजू अनास आकाश अगंज अपंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अपेख अनाम अकाम अगाह अटाह अनाथे परमाथे अजूनी अमूनी ना रागे ना रंगे ना रूपे ना रेखे अकर्मं अपरमं अगंजे अलेखे पूजंग पर्यात छंद नमस्तुल परनामे समस्तुल परनासे अगंजुल अनामे समस्तुल निवासे निरकामं बेपूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मं परनासे स्वधर्मं बेपूते सदा सचदानंद सतरंग परनासी करीमुल कुनिंदा समस्तुल निवासी अजायब बेपूते गजायब गनीमे हरियंग करियंग करीमुल रहीमे चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते स्वयं भव सुभंग सर्वदा सर्व जुगते दोकालं परनासी दयालं स्वरूपे

मन हो आवन जारा। ए रसना तू अनरस राच रही, तेरी प्यास ना जाए प्यास ना जाए। होरत किता जिचर हर रस पलै ना पाए, हर रस पाए पलै पिया हर रस। बहुड़ ना तृष्णा लागै आए, एहो हर रस करमी पाईऐ। सतगुर मिलै जिस आए, कहै नानक होर अनरस सब विसरे। जा हर वसै मन आए, ए शरीरा मेरिया हर तुम मह जोत रखी। ता तू जग मह आया, हर जोत रखी तुद विच। ता तू जग मह आया, हर आपे माता आपे पिता। जिन जियो उपाए जगत दिखाया, गुर प्रसादी बुझिया। ता चलत हुआ चलत नदरी आया, कहै नानक सृष्ट का मूल रचिया। जोत राखी ता तू जग मह आया, मन चाओ भया प्रभ आगम सुनिया। हर मंगल गाओ सखी, गृह मंदर बनिया। हर गाओ मंगल नित सखिए, सोग दुख ना व्यापय। गुर चरण लागे दिन सुभागे, अपना पिर जापय। अनहत बाणी गुर शब्द जानी, हर नाम हर रस भोगो। कहै नानक प्रभ आप मिलिया, करण कारण जोगो। ए शरीरा मेरिया इस जग मह आए, कै क्या तुद कर्म कमाया। के कर्म कमाया तुद शरीरा, जा तू जग मह आया। जिन हार तेरा रचन रचिया, सो हार मन ना वसाया। गुर प्रसादी हर मन वसया, पूर्व लिखिया पाया। कहै नानक एहो शरीर परवान हुआ, जिन सतगुर स्यो चित लाया। ए नेत्र हो मेरे हो, हर तुम मह जोत धरी। हर बिन अवरना देखो कोई, हार बिन अवरना देखो कोई। नदरी हर निहालिया, एहो विस संसार तुम देख दे। एहो हर का रूप है, हर रूप नदरी आया। हर रूप नदरी आया, गुर प्रसादी बुझिया। जा वेखा हर एक है, हर बिन अवर ना कोई। कहै नानक एह नेत्र अंध से, सतगुर मिलिया दिब दृष्ट होई। ए श्रवण हो मेरे हो, साचै सुन नैनो पठाए। साचै सुन नैनो पठाए, शरीर लाए। सुन हो सत बाणी, जित सुनी मन तन हरिया हुआ। रसना रस समाणी, सच अलख विडाणी। ताकि गत कही ना जाए, कहै नानक अमृत नाम। सुनहो पवित्र होवा हो, साचै सुन नैनो पठाए। हर जियो गुफा अंदर रख कै, वाजा पवन वजाया। वजाया वाजा पौन, नौ द्वारे प्रगट किए। दसवा गुप्त रखाया, गुरुद्वारा

तिस दा अंत न जाई पाया। कह नानक हर प्यारे जियो गुफा अंदर रख कै वाजा पवन वजाया। एहो साचा सोहेला साचा घर गावहो गावहो ता सोहेला घर साचा जिथै सदा सच त्याव हे। सचो त्याव है जात उद भाव है गुरमुख जिना बुझाव हे। एहो सच सबना का खसम है जिस बक्से सो जान पाव हे। कह नानक सच सोहेला सचै घर गाव हे। अनद सुनहो वड भागी हो सगल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल वेसूरे। दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी। संत साजन भए सरसे पूरे गुर ते जानी। सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया भार पूरे। बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया भार पूरे। बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की।

0: एक ओंकार श्री वाहे गुरु जी की फतह है। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुर नानक लई त्याए फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाये अर्जन हर गोबिंद नो सिमराओ श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई जिस डिठै सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया घर नौ निध आवै ताए सब थाई होई सहाय दसवें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाई होई सहाय दसा पातशाहियां दी आत्मिक जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी पंजा प्यारियां चौफा साहिब जादियां चाली मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई तेग वाही देख के अन देठ कीता तिन्हां प्यारियां सचियारियां दी पवित्र कमाई दा ध्यान धर के बोलो जी वाहिगुरु जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लुहाईयां चरखड़ियां ते चढ़े आरिया नाल चिराए गए गुरद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसां सुवासा नाल निबाही तिना समूह शहीदां सिंघां दी पवित्र कमाई दा ध्यान धर के बोलो जी वाहिगुरु पंजा तख्तां सरबत गुरद्वारियां दा ध्यान धर के बोलो जी वाहिगुरु प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चित आवे चित आवन का सदका सर्ब सुख होवै जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रच्छिया रियायत देख देख फतह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलो जी वाहिगुरु बख्शो जी सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर जी दे दर्शन इशनान चौंकियां झंडे पुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहिगुरु आप जी दे सिखां दा मान नीवा मत उच्ची मत पत दा राखा आप वाहिगुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार दियो समूह गुरद्वारियां गुरधामां जिन्हां तो पंथ नूं विछोड़िया गया है दे खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान प्यारे खालसा जी नूं बख्शो हे निमाणियां दे मान नेताणियां दे तान नियोटियां दी ओट धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज आप जी दे पावन चरण कमला पास अरदास बेनती है आप जी दी कृपा दा सदका अमृत वेले तो लैके आप जी दी पवित्र हजूरी अंदर पांच बाणियां दे नितनेम संपूर्ण होए हन महाराज बाणी दे जाप करदियां तो आप जी दे सेवकां पासों होईयां भुलां बख्श लैणियां अगे वास्ते सुमत बख्शिश करनी बड़ी सुनी बाणी दा फला देच दर आई संगत दे हिरदियां ते वसाउणा दर आई संगत दी हाजरी तिल फुल भेटा अपने दर ते प्रवान करनी सब नू अपने दर करो नाम दी दात गुरसिखां वाला जीवन चढ़दियां कला बख्शिश करके करतार्थ करना संगतां दे सिर ते मेहर भरिया हथ रख के घरां विच सुख शांति वरतौनी आपस विच प्रेम इतफाक दी दात बख्शनी किरत कमाईयां विच बरकतां पाउनियां कारोबारां विच वाधे बख्शिश करने शरीरक तौर ते तंदुरुस्तियां बख्शिश करदिया होया अपने दर घर दे नाल आप जी ने इसे तरह जोड़ी रखना आप जी दी पवित्र हजूरी अंदर पंचामृत श्री कड़ाह प्रसाद जी दी देख सजा के हाजिर है आप जी दे दर प्रवान होवे दर प्रवानिया होया प्रसाद संगत विच वरताउण दी आग्या बख्शो ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ੋ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚੇਤਾਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ।
1: ਵਾਹਿਗੁਰੂ।

सो कहो टल गुर सेविया अहनेस सहज सुबाए दर्शन परसिया गुरु कै जन्म मरण दुख जाए होवै सिफत खसाम दी नूर अरसहु कुरसहु चटिया तुद डिठे सच्चे पाते साह मल जनम जनम दी कटिया सज्जन सच्चा पाते साह सिर साहां दैसाहो जिस पास बैठिया सोहिया सबना दावे साहो सतनाम वाहे गुरु साहिब जी सोरठ महला पंजवा आगै सुख मेरे मीता पाछे आनद प्रभ कीता आगै सुख मेरे मीता पाछे आनद प्रभ कीता परमेश्वर बनत बनाई फिर डोलत कतहु नाही साचे साहिब स्यो मन मानिया हर सर्ब निरंतर जानिया रहाओ सब जी तेरे दयाला अपने भगत कर है प्रतपाला अचरज तेरी वडियाई नित नानक नाम ते आई

सो कहो टल गुर सेविया अहनिस सहज सुबाए दर्शन परसया गुरु का जन्म मरण दुख होवै सिफत खसाम दी नूर अरसा हो।

मन क्यों बैरा करेगा, सतगुर मेरा पूरा। आप संगतान गुरबाणी का कीर्तन सरवण करा रहे सन भाई सुखविंदर सिंह जी, गुरद्वारा जामनी साहब वाले का रागी जत्था, तिना का बहुत बहुत धन्यवाद संगतान वालों। हुण समा कथा का है, भाई गुरदास जी के कबीर सबइयां विचों कथा सरवण करिए जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।

सुख सागर दुर्त निवारण शब्द सरे गावै गंभीर धीर मत सागर योगी जंगम ध्यान तरहि गावै इंद्राद भगत पहलादिक आत्मरस जिन जानियो

बास कर सब बालो सदा सुख मन वस दुख संसार खुवै गुर नाम निद दरियाउ जन्म हम कालिक धोवै सुकहु टल गुर सेविया अहनिस सहज सुभाई दर्शन परसें गुरु का जन्म मरण दुख जाई दर्शन परसें

अपने भगत करहे प्रतपाला, आचार्य तेरी वड्याई, नित नानक नाम ध्याई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी, जिन्हां दे पावन पवित्र चरणां अंदर आनंद कारज की आरंभता की अरदास होई है, सच्चे पातशाह ने हुक्मनामा बख्शिश किया है। हुण रागी सिंह पल्ले दा शब्द पढ़नगे। बेनती है बेटी दे परिवार नूं, ओह बेटी नूं बेटे दा पल्ला फड़ाउण, उस तों बाद फिर लावां दा पाठ शुरू होवेगा। आओ बड़े प्यार नाल पल्ले दा शब्द फरमान करिए।

मन चौ पया बैरागिया बलराम जियो संत जना हर मेल हर पाया वडभागिया बलराम जियो निर्मल हर पाया हर गुण गाया मुख बोली हर बाणी संत जना वडभागी पाया हर कथिए अकथ कहानी हिरदय हर हर हर धुन उपजे हर जपिए मस्तक भाग जियो जन नानक बोलै तीजी लावै हर उपजै मन बैराग जियो।

हर प्रभ ठाकुर काज रचाया, तन हिरदा नाम विगासी, जन नानक बोलै चौथी लावै, हर पाया प्रभ अवनासी। हाँ जी,

चा सगल समग्री तुमरा सूतर तुमते हो सो तुमरी गात मेत तुम ही नानक दास सदा वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमरकै गुरु नानक लई ते आए फिरंगत गुरते अमरदास रामदासी हुई सहाय अर्जन हर गोबिंद नू समराउ श्री हर राय श्री हर किशन ते आईया जिस डिठा सब दुख जाय तेग बहादुर सिमरिया घर नौन दयावै धाई सब थाई हुई सहाय दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुई सहाय दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान तरके बोलो जी वाहेगुरु पंजा प्यारियां चौहां साहिब जादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया मंड छकिया देख चलाई तेग वाही देख के अन डिठ कीता तन्हां प्यारियां सचियारियां दी कमाई